0: है लाइका रेडियो सी टीवी एंड सी फाइव प्राउडली प्रेजेंट हमारे राम प्रोड्यूस्ड बाय फेलिसिटी थिएटर इंडिया और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एज रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई इवेंटिम अपोलो हैमरस्मिथ हमारे राम बुक योर टिकट्स नाउ विजिट www.eventimapolo.co.uk एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410 एट ऑल प्रोटेक्टेड
0: This is Leica Radio, part of the Leica Radio Network.
3: अपने बिजनेस को UK के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें Leica Radio Sales on 0116-471-0697 या ईमेल करें sales@leicamedia.co.uk.
0: Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइए एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा भवाइए हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोए नान हुक्मे

सो मैं विसर ना जाए। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जाणी है नाल चले सब कोए। चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जगले,

पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोन लिवलाए तार कुदरत कौन कहा।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड़ हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच्छ मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे

तेरे भगत रसाले। होर केते गावन से मैं चितनावन, नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई है भी हो।

हत जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट बाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अवरासा।

जोर ना जीवन मरण ना जोर, जोर ना राज माल मंसोर, जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुटै संसार, जिस हाथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए, राती रुती चित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोहन पंच परवार।

0: ये दिन तो आता है एक दिन जवानी में. तो भाई बता दे, मेरा नाम है अश्विनी एंड आई एम सिटिंग इन फॉर रितु शर्मा शो टुडे. हमारा शो आ रहा है मैनचेस्टर में, मिडलैंड्स में, लंदन में, और 3 घंटे रहने वाला है आपका और मेरा साथ. तो एक बार मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है. इट्स 13:10. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो. ओके, एंड बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं. यस, डिल फ्रॉम ईलिंग, आप लिखते हैं कि भाई आप काफी प्रेजेंटर्स को कवर कर लेती हैं अलोंग विद आपका भी अपना खुद का शो भी जो चल रहा है. तो मैं कल रात आपका शो सुन के सोया था और अब जब आंख खुली और फिर से रेडियो लगाया तो आपका ही आवाज है ना. एक्चुअली रेडियो वाली जो मेरी पड़ोसन है, कल रात में मुझे बोली तू कहां घर जा रही है, यहीं पे बोरिया बिस्तरा लगा के सो जा. मैंने कहा हाँ यार, एक्चुअली सुबह ब्रेकफास्ट शो होता ना तो मैं शायद यहीं पे सो जाती. बट इट हैपेंस मोस्ट ऑफ द टाइम, इट हैपेंस राइट, कि हम लोग दो चीजें जो मिस करते हैं कहीं पे भी अगर बाहर जाए, वन इज हमारा अपना खुद का बेडरूम का गद्दा एंड दूसरा इज हमारा बाथरूम. दैट इज व्हाट समथिंग आई वुड नेवर कॉम्प्रोमाइज फॉर, कि अगर मैं लंदन में ही हूं, चाहे मेरा शूट चल रहा है, चाहे मैं रेडियो पे हूं, आई मेक इट अ पॉइंट कि आई विल गो होम. बस भाई अपना घर है ना. तो मैं आप सबसे पूछना चाहती हूं कि ऐसी कोई चीज है आपकी लाइफ में जो लगता है कि नहीं है, बस ये जो है ना, फॉर मी दैट इज लाइक मेरे घर का अपना गद्दा, माई बेडरूम एंड बाथरूम. तो ऐसा ऐसे किसी चीज को लेके आप लोग पर्टिकुलर है अपनी लाइफ में, जरा बताइएगा जरूर. नेक्स्ट, अमेजिंग ट्रैक्स लगे हुए हैं. जी हाँ, रितु जी का शो है तो रितु जी के शो में जो जो सारी चीजें होती है वो यहाँ की होने वाली है, लेकिन आवाज और अंदाज थोड़ा होगा अलग आज.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling today could get you up to 128 rupees 25 paise. Indian rupees hain to dhyan rakhiyega. Remember to make your transfers via branch online or by using the Yono SBI UK mobile app.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio.
2: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Leica Radio.
3: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020 8839 0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything, and this one is a villa.
4: Introducing Greens by Tanyo, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
4: High appreciation.
5: In Dubai.

0: गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स एंड मैनचेस्टर. मेरा नाम है अश्विनी एंड आई एम सिटिंग इन फॉर रितु शर्मा टुडे. बिल्कुल वही हमेशा का तरह जो है शो आने वाला है और गपशप इंटरेक्शन चल रही है. आप लोग सभी आश्चर्यचकित हो रहे हैं, थोड़े सरप्राइज है. अभी तो तुम गई थी शाम में अश्विनी, रात में तुम गई थी और वापिस आ गई. चलो यार, चलते रहता है. दिस इज वॉट इज द मैजिक ऑफ हमारी अपनी रेडियो का. सो कुछ यूनिक जॉब्स के बारे में मैं बात करने वाली हूँ. और मैंने आप सबसे सवाल पूछा था कि जैसे मैं बड़ी पर्टिकुलर हूँ कि यार मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो आई मिस माई गद्दा एंड माई बाथरूम. तो ऐसा किसी का कुछ पर्टिकुलर है तो सब लोग अपनी अपनी राम कहानी मुझे भी सुना रहे, क्योंकि मैंने अपनी राम कहानी सुनाई है सबको. किसी ने कहा कि भाई मैं कहीं पे भी जाऊँ मैं अपनी पिलो लेके जाती हूँ. किसी ने कहा कि आई हैव अ स्पेशल ब्लैंकेट दैट इज वेरी फेवरेट, मैं उसे हमेशा अपने साथ में रखता हूँ. किसी ने लिखा कि मेरे फेवरेट पजामाज है, मैं दुनिया के कितने भी स्टार होटल में चला जाऊँ कुछ भी जाऊँ लेकिन मेरा वो फेवरेट पजामा और टी शर्ट है ना वो हमेशा मैं कैरी करता हूँ. आई एम सीरियसली लविंग दिस जवाब कि ना ऐसी छोटी छोटी चीजें ना हमें कोई पूछता ना हम कभी किसी को बताते हैं, लेकिन इस शो में वो होने वाला है. नेक्स्ट ट्रैक आप सबके लिए लेके आए हैं ईमानदार फिल्म से सुरेश वाडकर एंड आशा भोसले की आवाज में.
1: Like a radio. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: For £1, you'll get 128.85 Indian rupee, 379.88 Pakistani rupee, 167.44 Bangladeshi taka, 87.39 Afghan Afghani, 437.97 Sri Lankan rupee, 1.36 US dollars, 176.04 Kenyan shilling.
2: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Leica Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands with the UK's biggest Asian hits. Gold Rate is brought to you by Ram Jewellers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
1: Gold is currently trading at £111.29 per gram.
0: Ram Jewellers, specialising in diamond jewellery, platinum jewellery, 22 karat gold, white gold jewellery, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewellers on 116 Belgrave Road, Leicester or call 0116 266 4278.
2: Leica Radio.
0: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms. This is the Leica Radio Network across London, Manchester, and the Midlands. India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
1: राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मैच शुरू होने वाला है पूरे चार घंटे बाद यानी हमारे अपने 3 बजे.
0: India cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
1: मिलाली की घड़ियां देखते हैं टाइम कितना हुआ है. It's 48 minutes past 10. आप सभी ने ट्यून इन किया है Leica Gold Radio in London and Leica Radio in Midlands and Manchester. भाई कई लोगों को बातें करना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है. कुछ लोगों को बातें करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, स्पेशली स्मॉल टॉक्स तो अच्छी लगती ही नहीं. तो ये एक मोहतरमा है जिन्होंने जिंदगी के 28 साल पूरे 28 इयर्स इन्होंने फेक किया, झूठ बोला कि मैं अंधी हूं, मुझे दिख नहीं रहा है. एंड द रीजन फॉर दिस वाज क्योंकि उन्हें लोगों से बात करना पसंद नहीं था. तो कैरमन जो 57 इयर्स ओल्ड हैं, उन्होंने ये किया नियरली 3 decades. 30 साल तक ये इंसान जो हैं, ये बिकॉज बातें करना इनको पसंद नहीं है लोगों से ज्यादा, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई मैं अंधी हूं. अब ऐसे भी अंधी हूं मतलब मेरे से कोई बात नहीं करेगा क्योंकि मुझे दिखता नहीं है, तो टॉपिक्स कम रहेंगे, ये सारी चीजें थी. लेकिन ओवरऑल उनकी फैमिली हमेशा सरप्राइज होती थी कि टीवी के जो सीरियल्स चल रही हैं, सीरीज चल रही हैं, इन्हें कैसे पता होता है कि कहां पे क्या चल रहा है. और ये मेकअप बड़ा प्रॉम्प्टली अच्छे से करती थी. लेकिन एक दिन ये चीज सबके सामने आ गई कि 28 साल तक इन्होंने बातें नहीं करनी है, इसलिए खुद को अंधा बताया. नाउ शी कुड बी फेसिंग लीगल इश्यूज टू आफ्टर रिपोर्टेडली रिसीविंग डिसएबिलिटी बेनिफिट्स व्हाइल प्रिटेंडिंग. जी ये बड़ी गड़बड़ वाली एक बात हो जाती है कि जब इंसान मिसयूज करने लगते हैं चीजों को, तो उसकी तैयारी भी लोगों को रखनी चाहिए. वेल, आप अपनी सैटरडे संडे मंडे से लेके फ्राइडे तक पूरा हफ्ता जो है आप तैयारी रखिए मेंटली अपनी एंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि आपने अपना म्यूजिकल रेडियो ऑलरेडी चुन लिया है और आप हमारा साथ देते हैं, हम आपका साथ देते हैं. ढेरों मैसेजेस आ रहे हैं आप सबके. कोई खाने पीने के लिए पूछ रहा है, कोई कह रहा है कि क्या बात है, आज लंच बनाओगी या छुट्टी रहेगी. चलिए बढ़ते हैं आगे.
0: ये है लाइका रेडियो.
3: इतना सस्ता डील देखा है कभी?
4: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी. मुस्तफा बासमती XXL राइस 40 LBS सिर्फ 34.99.
3: हमजा समोसास 3 for 10.
4: टॉप स्टार फ्राइड अनियंस ओनली 99p.
3: सुहाना मसालास 2 for 150. रामदेव नमकीन 2 for 149.
4: हीरा ग्राम फ्लावर 179. हाइंस केचप 279.
3: केसर मैंगो पल 149. फुल मखाना 245. फाल्कन कैश एंड कैरी
4: 82 असिस्टेंट स्ट्रीट LE12JU या रोलेट्स हिल LE54UN.
3: While stocks last.
0: The wait is now over. The King of Melody, Kumar Sanu, live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
5: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
0: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
5: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
0: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Embryo Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio.
6: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए. दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
7: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ. एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज. व्हाट्स योर ट्रैवल Mantra.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location,
8: high appreciation
9: in Dubai.
10: भक्ति, प्रेम और समर्पण की एक दिव्य कहानी.
11: अच्छा कान्हा, क्यों जा रहे हो?
12: क्योंकि नियति मेरे बस में नहीं.
10: देखिए कृष्णा, राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा की अमर लीला.
12: वचन दिया था राधा को निभाना पड़ेगा.
10: कृष्णावतारम इन सिनेमाज नियर यू.
12: ये बंसी तुम्हारी राधा और मेरा नाम भी.
13: Pepe's Piri Piri is turning up the heat. Pepe's Piri Piri on Belgrave Road, Leicester, with grills fired up and ready to serve your flame-grilled Piri Piri favorites. Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
14: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEEDSAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and motichur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location,
8: high appreciation
9: in Dubai.
0: Listen back to your favorite shows by logging on to LeicaRadio.com and selecting Midlands or the mobile app. The Ritu Sharma Show, featuring classics non-stop with Ritu Sharma on Leica Radio. Are you listening? Leica Radio is now available across Birmingham on DAB.

0: क्या बात है, फैंटास्टिक गीत आप लोगों के लिए लेके आए थे। इस सेकेंड आवर की शुरुआत हमने की हम आपके हैं कौन, विच वॉज रिलीज इन 1994, लता मंगेशकर एंड एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में। मौसम का जादू, मौसम का जादू एक्चुअली तो अभी आ रहा है ना, स्प्रिंग आ गया, समर्स आ रहे हैं, तो जादू तो बिखरने वाला है। एंड नेक्स्ट ट्रैक वॉज किशोर कुमार की आवाज में पाप की दुनिया चोरी चोरी यूं जब। अब इसमें सनी देओल जो है फ्लूट बजाते हुए जंप करते हैं, एट ढिंचाक कितनी बार जंप की होगी ना उन्होंने, वो गाना मैंने देखा था एंड बहुत साल पहले कभी तो ये सुना भी था। आई सेड यार जरा ट्राई करते हैं, ये वाला गाना ना बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो हमने सेकेंड आवर की शुरुआत कर दी है और इस आवर का फीचर होता है यादें। तो यादें जरूर याद करेंगे, अभी नहीं कुछ देर बाद, लेकिन उसके पहले हो जाए थोड़े से यूनिक जॉब्स। अभी यूनिक जॉब्स जो होते हैं जरा हटके जॉब होते हैं, आप और हम देखिए जैसे नौकरी करते हैं वैसे होते हैं, कुछ अनकन्वेंशनल जॉब होते हैं। जैसे हम रेडियो प्रेजेंटर्स जब आते हैं तो दिस इज नॉट अ कन्वेंशनल जॉब, ये अनकन्वेंशनल जॉब में ही आता है। लेकिन यूनिक जो है ये हटके जॉब्स क्या होते हैं, तो स्नेक मिल्कर्स यानी ये जो है डेंजरस सांपों से उनका जहर निकलवाते हैं और ये एंटी वेनम जो हॉस्पिटल्स में लगता है वहां पे प्रोवाइड करते हैं। ओडर जज, अब ये डिओड्रेंट्स एंड माउथ वॉश के लिए जो एक्चुअली फ्रेग्रेंस या स्मेल होना चाहिए वो किस लेवल पे होता है, ये ओडर जज करते हैं सर्टेन ह्यूमंस। तो स्वेट और ब्रेथ का स्मेल लेना एनीवेज ओडर जज भी होते हैं। पेट फूड टेस्टर, तो ये न्यूट्रिशनल वैल्यू पे पेट्स के जो फूड होते हैं उसे भी टेस्ट करके देखते हैं। नाउ दिस इज समथिंग वेरी यूनिक, ये मुझे जरा हटके लगा। ये एक तो है कि सबमरीन कुक है वो ही प्रिपेयर्स मील, ही और शी प्रिपेयर्स मील इन टाइट हाई प्रेशर एनवायरमेंट ऑफ अ सबमरीन। एक तो सबमरीन इतनी, उसमें सब टाइट जगह में बैठते हैं, उसमें से खाना भी कुक करना है, कितना मतलब यूनिक होगा। उससे ज्यादा यूनिक तो मुझे ये लगा भाई, लाइन स्टैंडर गेट्स पेड टू वेट इन लॉन्ग लाइन्स फॉर न्यू प्रोडक्ट्स और इवेंट्स टिकट। नाउ दिस इज रियली इंटरेस्टिंग, किसी क्यू में आप खड़े हैं घंटों से, यू आर गेटिंग पेड फॉर दैट, दैट्स इंटरेस्टिंग जॉब एंड ए यूनिक वन।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आज आपको मिल रहा है 128.25 रुपए। और जब भी आपको भारत पैसे भिजवाने हों तो ट्रांसफर जरूर कर सकते हैं ब्रांच ऑनलाइन या बाय यूजिंग योनो SBI UK मोबाइल ऐप।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is Leica Radio. CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Leica Radio.
2: Asiana, in association with ZTV and Leica Radio, brings you the Asiana Lifestyle Show on Sunday the 31st of May at the new Bingley Hall in Birmingham,
3: where weddings, fashion, jewellery, beauty and lifestyle come to life under one roof.
2: Meet the UK's top brands, discover exclusive offers and get ready to be inspired and entertained in style.
3: Register now for free tickets at asianalifestyleshow.com.
2: For sponsorship and details, call 07803 633 926.

0: मैं क्या। Listen to Like a Gold 2 on Like a Radio mobile app, likearadio.com and Alexa. Play Like a Gold 2.
1: जिसको सबकी खुशी का है ख्याल, क्या है उसके दिल का हाल? मिलिए अनुपमा से.
2: Anupama, Monday to Sunday at 8:30 PM, only on Utsav Plus. Utsav Plus, Sky Channel 705, Veggie Media 803 and EE3.

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: What a beautiful track. Jeeva Film se sunaya aap sabhi ko Amit Kumar aur Asha Bhosle ki awaaz mein ye geet. It's 28 minutes past 11. 28 minute ho chuke hain 11 bajke. Aap sabhi ne tune in kiya hai Laika Gold Radio London mein aur साथ में लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स एंड मैनचेस्टर. तो दिस इज द रितु शर्मा शो. माय नेम इज अश्विनी. आई एम सिटिंग इन फॉर द रितु शर्मा शो. जनरली आप मुझे सुन रहे हैं वीक डेज में शाम 7 बजे से लेके 10 बजे तक द इवनिंग शो विद अश्विनी में, मंडे से लेके फ्राइडे तक. तो जिन्होंने मुझे वीक डेज में नहीं सुना है तो जरूर सुनिएगा. आई प्रोमिस मस्ती मजा इंटरेक्शन वाला शो ज्यादा ही होता है. अभी तो चल ही रहा है और भी होता ही है. ओके, सो आज का सेकेंड आर का जो फीचर है That is यादें. यादें में आज मैं बात करने वाली हूं देवानंद एंड साधना के बारे में. What a beautiful pair. देवानंद एंड साधना, इनकी पेयरिंग जो है ये बहुत सेलिब्रेटेड पेयर था बॉलीवुड फिल्मों में. एंड इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में की हैं, उसमें से स्पेशली हम दोनों और असली नकली. इन फिल्मों से मैं आप लोगों के लिए आज दो गीत लेके आई हूँ. पहला गीत मैं आप सबको सुना रही हूँ हम दोनों फिल्म से, विच वॉज रिलीज इन 1961, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में. एंड सेकेंड ट्रैक जो मैं आपके लिए लाई हूँ वो है असली नकली फिल्म से. 1962 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में. तुझे जीवन की डोर से बांध दिया है. दोनों ही ट्रैक्स मेरे बड़े ही फेवरेट हैं एंड आई एम श्योर आप सभी इसे जरूर एंजॉय करेंगे. अगर वॉल्यूम अप रखना चाहते हैं तो रखिए, लेकिन आई थिंक ये वाले गीत जरा मीडियम वॉल्यूम में बड़े अच्छे लगते हैं ना.
0: Laika Radio Tasty Track of the Hour, brought to you by Coca Noodles.

0: व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक. इसके पहले भी जो आपको ट्रैक हमने सुनाया हम दोनों फिल्म से, ब्यूटीफुल. एंड दिस वन इज लाइक ओ माय गॉड. मैं आप सबको तो कह रही थी कि वॉल्यूम लो करके ही सुनना चाहिए या मीडियम रख के ही इसे सुनना चाहिए. मैं खुद भी एक्चुअली जनरली स्टूडियो में होता है कि ये चार दीवारें, बड़े बड़े स्पीकर्स, चार पांच स्क्रीन और हम और जो सामने कंसोल रखा होता है. तो मैं खुद भी इस गीत को ना मीडियम वॉल्यूम पे आंखें बंद करके सुन रही थी. व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक दिस इज, है ना. एंड कितना प्यार से बोलना है कि यार अब तो गले पड़ चुकी हो तुम, है ना. अब तो तुम कितना भी परेशान करो, अभी जुल्म सितम, वो जुल्म सितम, एक्चुअली जुल्म सितम तो थोड़ा नेगेटिव ही इमोशन हो गया, लेकिन जिस प्यार से मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने गाया ना, वो जुल्म सितम लगता है आह जैसे पनीर की सब्जी बनी हो. आह आने दो, आने दो जुल्म सितम सर आँखों पर. आई रियली लव दिस काइंड ऑफ लिरिकल वे जब चीज़ें लिखी जाती है, जब गाया जाता है. पुराने गीतों का ना यही तो मज़ा है कि जो आप और हम लाइका गोल्ड रेडियो लंदन में सुन रहे हैं, साथ ही लाइका रेडियो मैनचेस्टर और मिडलैंड में जब ये शो सुनते हैं, तो हमें एक्चुअली ये फीलिंग जब आती है कि कितने सुंदर गीत लिखे गए हैं. और जब हम यहाँ पे इस हॉट सीट पे आके बैठते हैं, आप सबका साथ मिलता है ना, तो यकीन मानिए हमारा दिल जो है ना गार्डन गार्डन हो जाता है. Like extra podcast updates. पॉडकास्ट का एपिसोड नंबर 15 बाहर आ चुका है, वेडिंग्स एंड बियॉन्ड. इसे होस्ट किया है डॉनी ब्रास्को ने. वेडिंग्स का जो कल्चर अभी चल रहा है ये बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक बन गया है. क्या ये इंटीमेट वेडिंग्स जो है ये नई लग्जरी बन गई है? ऐसी बहुत सी बातों पे और सवालों पे इस पॉडकास्ट में बातचीत हुई है. लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल है स्पॉटिफाई पे, यूट्यूब पे, अमेजन, एप्पल और अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे, तो जरूर देखिएगा. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. Ye hai Leica Radio. Leicester, it's time to celebrate. Rouge Millers brings you the ultimate 50 Fest. 50 days of giveaways worth a huge £50,000. We're talking gold coins, LED TVs, designer saris, and over 50 luxury hampers up for grabs. Shop and you're automatically entered into our lucky draw or discover hidden vouchers as you go. Plus, instant rewards on fresh fruit and veg. Spend £5 and get a free hand wash. £10 for a food chopper. £25 for a teapan or kadhai pan. Rouge Millers, Melton Road, Leicester. 50 Fest, every shopper's a winner.
1: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises and soul-enriching yatras, we've got it all. Call City Bond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
3: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danu. Prime location.
2: High appreciation.
3: In Dubai.
4: For gold, silver and platinum bars you can trust, visit buybullion24.co.uk. Competitive prices, secure online buying and reliable service across the UK. For more details, WhatsApp on 073-7522-4418. Choose buybullion24.co.uk today.
5: Sade dasve Guru Govind Singh Ji Maharaj ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਈਵ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕਾਈ 769 ਤੇ ਵਰਜਿਨ ਮੀਡੀਆ 811 ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੀ.
6: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEEDSAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and moti chur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
7: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Punjab, the biggest tunes.

0: to Laika Radio 90s. 90s. On Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Radio 90s.
1: When it comes to heart attacks, you might be surprised to hear the symptoms don't always feel severe. You could experience a squeezing across the chest, a feeling of unease, a sense something's not quite right. Don't be tempted to dismiss the signs and wait to see what happens. The faster you seek medical help, the better your chances. It's never too early to call 999 and describe your symptoms. Your NHS is here for you.
0: This is the largest commercial Asian radio network in the UK. On this week's Laika Extra podcast, Weddings and Beyond with Donny Brasco.
2: It was these two creators and they had a wedding and they only had about 20 people and they were able to do individual introductions of all their guests to introduce them to other guests and how much they meant to them in their life. And I just thought that was so nice. I mean, if I did that for 300 people, they'd be there for a week.
0: Laika Extra is here. Search for our podcast, Laika Extra, on all major streaming platforms.
3: Star Track of the Hour, sponsored by Star Tours. 28 years of experience, 40,000 passengers every year. Star Tours is trusted for a reason by travelers who appreciate familiar comforts. That's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.
0: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
4: For £1, you'll get 128.85 Indian rupee, 379.88 Pakistani rupee, 167.45 Bangladeshi taka, 87.39 Afghan Afghani, 437.98 Sri Lankan rupee, 1.36 US dollars and 176.05 Kenyan shilling.
5: Laika Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Laika. Download LemFi now. T's and C's apply. Laika Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. With the UK's biggest Asian hits. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Laika Radio.
4: Gold is currently trading at £111.29 per gram.
0: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester or call 0116 266 4278.
5: Laika Radio.
0: This song is brought to you by Kumar Shanu, live at Royal Albert Hall, with exclusive radio partner Laika Radio. One date only, May 25th. Laika Radio. India cricket score updates, brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
4: Rajasthan Royals and Gujarat Titans के बीच मैच शुरू होने वाला है 3:14 के बाद, यानी कि हमारे अपने दोपहर 3 बजे.
0: India cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorised and regulated by the FCA.
4: मैं मिला लेते हैं एक बार घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है. इट्स 47 मिनट्स पास्ट 11. 11:47 हुए. अब मैंने क्यों 47 बोला कि 35, मतलब 35 के ऊपर जो है मेरी हिंदी की गिनती जो है वो थोड़ी गड़बड़ा जाती है एंड आई डोंट वांट टू टेक रिस्क अभी, है ना, इसीलिए मैंने आधा हिंदी और आधा इंग्लिश में बोल दिया है. 9th of May एंड सैटरडे, तो वीकेंड आपका हमारा साथ में सेलिब्रेट करना चल रहा है. आप लोग मुझे सुनते हैं जनरली वीकडेज में शाम 7 से 10 बजे के बीच, मंडे से फ्राइडे द इवनिंग शो विद अश्विनी में. टुडे आई एम कवरिंग द रितु शर्मा शो. सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक रहेगा आपका और मेरा साथ, और हमारे सारे प्रेजेंटर्स लाइंड अप है आपकी एंटरटेनमेंट के लिए. खूब जोर शोर से तैयारियां करके आते हैं यहां पे, क्योंकि इस माध्यम पे जब वो आके यहां पे बैठते हैं और आपका वीकेंड वो और हम जब साथ में मनाते रहते हैं तो बड़ा मजा आता है. बहुत सारे लोग अभी भी फर्स्ट क्वेश्चन पे जो मैंने आते से पूछा था कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसे लेके आप बड़े पर्टिकुलर हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई गार्डनिंग का हमें शौक है, तो जब भी हम कहीं और जाते हैं ना, तो जिनके घर पे कहीं गए कहीं होटल में रुके, किसी नए जगह पे गए, तो वहां जाके वहां के गार्डन को जरूर देखते हैं, वहां पे कौन से फूल पत्ती पौधे आए वो भी देखते हैं जी. अब बाहर जाने पे से एक्चुअली आई रेड अ ब्यूटिफुल आर्टिकल विच सेड अबाउट कि जब भी कोई इंसान ट्रैवल करता है तो ट्रैवलिंग उसकी लाइफ बदल देती है. आपने अगर तमाशा फिल्म देखी होगी तो तमाशा फिल्म में भी रणबीर कपूर घूम फिर के आते हैं, फिर अपने एक जो एक उनकी स्ट्रक्चर्ड लाइफ रहती है उसमें वो खो जाते हैं वापस. लेकिन दीपिका पादुकोण जो है उसकी लाइफ में पूरा 360 डिग्री चेंज आया हुआ रहता है. सो ये करता क्या है आपके लिए जब भी आप कहीं घूमने फिरने जाते हैं? और एक्चुअली सोलो ट्रिप्स ना जाना चाहिए. मैं जाती हूँ कई बारी सोलो ट्रिप, बट अगेन आई गो टू इंडिया, मुझे जाना है लंबा किसी हिमालयन ट्रिप पे जाना है डेफिनेटली. टोटली बिल्कुल अननोन क्राउड के साथ में जाइए, नए लोगों के साथ में जब आप ट्रैवल करते हैं और जब आप स्ट्रेंजर्स से मिलते हैं तो वो आपको कितना कुछ सिखा के जाता है. और ट्रैवलिंग हमेशा आपको इंट्रोस्पेक्ट करने में हेल्प करता है, इसीलिए अगर पॉसिबल है तो फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ जाइए, पेरेंट्स के साथ जाइए, सिबलिंग्स के साथ जाइए. ये ट्रिप्स तो करनी चाहिए, लेकिन सोलो ट्रिप बहुत बहुत ज़रूरी है. वो जो इंट्रोस्पेक्शन होता है, वो जो सेल्फ रियलाइजेशन आता है जब आप सोलो ट्रिप्स करते हैं, उसके बाद में लिख लीजिए मेरी तरफ से कोरे कागज पे कि आपकी लाइफ में कुछ तो 360 डिग्री चेंज आएगा, किसी ना किसी एक चीज में जरूर चेंज आएगा. क्योंकि हम ह्यूमंस जो है ना बड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं, और बहुत कम ऐसी प्रजाति है, ऐसी कैटेगरी है जो खुद को चैलेंज करते हैं कि कुछ ना कुछ नया मुझे जिंदगी में करना है. तो ऐसी चीजों पर और भी बातें होने वाली अगले घंटे में. अब धीरे धीरे हम पढ़ रहे हैं 12 o'clock की न्यूज की तरफ.
5: ये है Like a Radio.
6: लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
7: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी. मुस्तफा बासमती XXL राइस 40 LBS सिर्फ 24.99.
6: हमजा समोसास 3 for 10.
7: टॉप स्टार फ्राइड अनियंस ओनली 99p.
6: सुहाना मसालास 2 for 150. रामदेव नमकीन 2 for 149.
7: हीरा ग्राम फ्लावर 179. हाइंस केचप 279.
6: केसर मैंगो पल 149. फूल मखाना 245. फाल्कन कैश एंड कैरी
7: 82 असिस्टेंट स्ट्रीट LE12JU या रोलेट्स Hill LE54UN.
6: While stocks last.
8: The wait is now over. The King of Melody, Kumar Sanu, live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
9: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
8: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
9: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
8: Tickets available now at venue, box office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Embryo Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio.
10: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए.
11: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
10: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी.
11: गारंटेड
10: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे. साउथ हॉल ट्रेवल
11: फोन 0208574 8410.
10: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410. एट ऑल प्रोटेक्टेड.
12: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
13: Relax, I've booked the Uber already.
12: How? My roaming isn't even working yet.
13: I switched to Simzy before we left London.
12: Simzy? Since when are you the tech expert?
13: Since I decided I want a stress-free holiday.
14: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
15: T's and C's apply.
16: Location, location, location.
17: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
16: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
17: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
16: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
17: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
16: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
17: To book, call our London
18: London office on 020-3963-5757. Greens Bar Danube. Prime location.
19: High appreciation.
18: In Dubai.
20: None eaten, get ready. Pepe's Piri Piri is firing up something big. Our store is now open. From flame grilled chicken to mouth-watering wraps. It's bold, it's spicy, it's pure Pepe's. Visit us at 126 Abbey Street, CV11 5BZ. Pepe's Piri Piri. Pepe-licious.
21: Every child deserves a childhood, but many children in India are forced to leave school far too early. Cry UK is helping children stay in school and build brighter futures. Just £25 could help two children continue their education. Visit www.ukcry.org and help to make a difference.
22: The Ritu Sharma Show, featuring classics non-stop with Ritu Sharma on Leica Radio. This is Leica Radio across the Midlands.

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: ब्रेन ब्रोक फिल्म से सुनाया आप सभी को ये ट्रैक लता मंगेशकर की आवाज में, जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है। आप सभी सुन रहे हैं लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स एंड मैनचेस्टर। शो का नाम है द रितु शर्मा शो। मेरा नाम है अश्विनी, आई एम सिटिंग इन फॉर रितुज शो टूडे। थर्ड आवर में जनरली होता है थ्री वर्ड गेम, तो मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ ये तीन शब्द। आप सबको बताना है कि ये कौन सी फिल्म से मैंने गीत चुना है। ओके, दिस फिल्म वॉज रिलीज इन 1973। मुमताज और फरीदा जलाल पे ये गीत फिल्माया गया। कौन सा फिल्म, कौन सा गीत, चलिए बता दीजिए। बाबू कोई शहरी, ठीक है, मुझे बताइए। 1973 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, मुमताज फरीदा जलाल पे फिल्माया गया ये गीत बाबू कोई शहरी। ये कौन से गीत की मैं बात कर रही हूँ, असाइनमेंट ले लो। कितने टाइम से आराम से सब बैठे ना, अब तो खाना खाने भी बैठ गए। कोई ना, बीच में टाइम है, जरूर बताइएगा।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के लिए आपको मिलेगा 128 रुपीज एंड 25 पैसे। रिमेम्बर, अगर आप पैसे ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, इंडिया भेजना चाहते हैं, ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग योनो SBI UK मोबाइल ऐप, तो जरूर याद रखिएगा SBI UK मोबाइल ऐप।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk.
2: Leica Radio.
3: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
4: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
3: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
4: And you didn't pay those massive roaming charges?
3: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
5: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
6: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागासन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
7: 105 शोज पूरा कर्या पछी हवे लेस्टर मां आवी रह्यु छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी नाटक।
8: जेज एंटरटेनमेंट लेने आवी रह्या छे सखना रे जो हसबंड जी,
7: लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनो फुल डोज। 28 जून पीपल सेंटर लेस्टर मां बे शानदार शोज बपोरे 8 वागे अने सांजे 7 वागे। टिकट्स बुकिंग माटे कॉल करो मिस्टर B07860280655, मुंबई सैंडविच स्टेशन 07834832249 अथवा eventbrite.co.uk। सखना रे जो हसबंड जी।

0: कितने प्यार से अपने प्यार को जताया गया है इस गीत में लता मंगेशकर की आवाज में. लव इन टोक्यो इस फिल्म से आप सबको आर्टिस्ट ऑफ द वीक आशा पारेख. पूरे सप्ताह हमने आपको आर्टिस्ट ऑफ द वीक आशा पारेख की गीत सुनाए, उसी से मैं लेके आई हूँ ये गीत आप सबके लिए. अगला गीत हम लेके आए हैं यादों की बारात से, एंड सच अ ब्यूटीफुल ट्रैक. सारे के सारे गीत इतने सुंदर और इतने मंझे हुए ये गीत होते हैं, और जब हम लोग प्रेजेंट करते हैं ना तो ये जो सुकून यहाँ मिलता है इस हॉट सीट पे, एक तो आप लोगों से होती है गपशप, इंटरेक्शन होता है, फन मस्ती चलती रहती है. हम आप लोगों के घर के मेंबर्स तो ऐसे ही बन चुके हैं रेडियो द्वारा, क्योंकि 24 घंटे आपके घर में रहते हैं ना. ओवरनाइट सर्विस भी होती है, गोल्ड नाइट हमारी जो ओवरनाइट सर्विस है, जो लोग रात में काम कर रहे हैं, रात में जाग रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, तो जरूर गोल्ड नाइट्स को सुनिए. अच्छा, मुझे भी सुनिए भाई, बहुत से लोगों ने शायद मुझे नहीं सुना है. मेरा नाम है अश्विनी, आई एम सिटिंग इन फॉर द ऋतु शर्मा शो टुडे, एंड वीक डेज में आप हर शाम फिलहाल मुझे सुन रहे हैं द इवनिंग शो विद अश्विनी में, मंडे टू फ्राइडे शाम 7 से 10, पांचों दिन वेरिएशन होती है, मस्ती मजा गपशप इंटरेक्शन वहां पे भी चलते रहता है. और एक सर्वे आया है रिगार्डिंग मेन, अब ये क्या सर्वे है बात करते हैं इसके बारे में कुछ ही देर में. नाउ दिस ट्रैक थोड़ा मीडियम से अगर ऊपर करना चाहे तो कर सकते हैं वॉल्यूम. फैंटास्टिक ट्रैक,
1: फील गुड ट्रैक, ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली,
2: सॉफ्ट एंड टेंडर लाइक ग्रैंडमास वार्म हग. डेरी वैली पनीर इज मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड जीरो प्रिजर्वेटिव्स. विजिट dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: मैंने आप सबसे पूछा भाई, जो थ्री वर्ड गाना है वो कौन सा गीत है? बाबू कोई शहरी. दिस फिल्म वॉज रिलीज इन 1973. फिल्माया गया मुमताज एंड फरीदा जलाल पे. अभी भी टाइम है, फटाफट लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए आंसर, मैं वो गाना प्ले करने वाली हूँ. लेकिन उसके पहले बात करते हैं एक सर्वे की. तो सर्वे अकॉर्डिंग टू सर्वे सेंट ऑन अमेरिकन लाइफ 2021 अमेरिकन परस्पेक्टिव सर्वे, द शेयर ऑफ अमेरिकन मैन रिपोर्टिंग नो क्लोज फ्रेंड रोज फ्रॉम 3% विच वॉज इन 1990, वहां से अब 15% इन 2021 में हो गया. अब नाउ दिस इज 2026, तो सोचिए कि कितना ज्यादा परसेंटेज बढ़ते जा रहे हैं. मेन अलोन, राइट? एम आई राइट? क्योंकि ये सर्वेस जब लिए जाते हैं, जैसे हम औरतें नो फटाफट फोन उठा के अपनी बेस्टी से बात कर लिया, बहनों से बात कर लिया, अड़ोसी पड़ोसी, हमारी जो फ्रेंड्स, जो महिला मंडल होती है, हम लोग फोन उठा के बात कर लेते हैं. इज दैट समथिंग व्हाट यू डू? नहीं कर रहे, शुरू कर दीजिए. ह्यूमन लाइफ एक तो बड़ी प्रेशियस लाइफ होती है, उसमें से कितना चुप बैठोगे भाई? जो आपके फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, जिनसे बहुत टाइम से आपने बात नहीं की है, तो उठाइए फोन, घुमाइए नंबर. और ये अभी ज्ञान की बात आपके लिए प्रेजेंट की अश्विनी ने. मेरा नाम है अश्विनी, मैं आती हूँ वीकडेज में शाम 7 से 10 बजे के बीच, और मंडे से फ्राइडे रहता है आपका और मेरा साथ इन द इवनिंग शो विद अश्विनी. जो मैंने गीत पूछा था, थ्री वर्ड गीत कौन सा है? बाबू कोई शहरी. दिस इज फ्रॉम द फिल्म लोफर. करेक्ट, आप सबने सही आंसर्स दिया. और आप सबके लिए प्रेजेंट करते हैं ये गीत अभी. टन टन टन.
0: दिस इज रितु शर्मा, द रितु शर्मा शो ऑन लाइका रेडियो.
3: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.
0: Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Is Leica Radio.
4: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410, and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
5: No more worries for me or you.
6: Southall Travel, at all protected.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai.
9: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries, and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
10: Leicester, the biggest celebration of the year is here.
9: 50 Fest at Root Millers, powered by Kalyan Jewelers,
10: Kavya Silks,
9: Rafiq Catering
10: and Jungle Club,
9: Glozo,
10: Mars, Dreams
9: and Neslo Estate Agents.
10: Join the fun with games, dancing and live anchoring, and walk away with amazing prizes. Spend £50 for 1 kg of ghee or £200 for 50 15 snacks of sugar.
9: Plus 2,000 more root packs hidden vouchers. All our customers are winners. With £50,000 in prizes to be won, this is one event you can't miss. Root Millers on Melton Road, Leicester.
11: Bhakti, Prem aur Samarpan ki ek divya kahani.
12: अच्छा काना क्यों जा रहे हो?
13: क्योंकि नियति मेरे बस में नहीं।
11: देखिए कृष्णा, राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा की अमर लीला।
13: वचन दिया था राधा को निभाना पड़ेगा।
11: कृष्णावतारम इन सिनेमाज नियर यू।
13: ये बंसी तुम्हारी राधा और मेरा नाम भी।
14: Mantra Holidays wishes you and your family a holiday season filled with joy, laughter and unforgettable moments. As you celebrate, start planning your next adventure with us. Visit www.mantraholidays.co.uk or call 0203-773-633 now. APTA bonded.
15: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
16: Save the date. Friday 3rd to Sunday the 5th of July. An Indian summer is back.
17: Presented by Inspirate. Exclusive radio partner, Leica Radio Midlands.
16: For sponsorship inquiries, call Leica Radio on 0116 471 0697.
17: Or sales at leicamedia.co.uk.
18: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Listen back to your favourite shows by logging on to LeicaRadio.com and selecting Midlands or the mobile app. This is the Leica Radio Network, broadcasting across the UK. This is Leica Radio, part of the Leica Radio Network. Seven stations. One podcast. One mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0116 471 0697 or sales at leicamedia.co.uk.
19: Tasty Track of the Hour, brought to you by Coca Noodles.

0: tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
1: Leica Radio. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
2: For £1, you'll get 128.72 Indian rupee, 379.91 Pakistani rupee, 167.46 Bangladeshi taka, 87.40 Afghani, 438.03 Sri Lankan rupee, 1.36 US dollars, 175.57 Kenyan shilling.
3: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Leica Radio.
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
2: Gold is currently trading at £111.29 per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116-266-4278.
3: Leica Radio.
1: Leica Radio. Leica Radio, finalist at the Radio Academy Arias 2026. Leica Radio. India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
2: राजस्थान रॉयल्स एंड गुजरात टाइटंस के बीच मैच शुरू होने वाला है दो घंटे एंड सिक्सटीन मिनट्स मतलब हमारे यहाँ के दोपहर 3 बजे.
1: India cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
2: टिक टिक करते हुए घड़ी कह रही है अश्विनी, जरा एक बार टाइम चेक तो कर लीजिए. इट्स 45 मिनट्स पास्ट 12. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड मिडलैंड्स एंड मैनचेस्टर में आप सुन रहे हैं लाइका रेडियो. दिस इज द मॉर्निंग शो विद ऋतु शर्मा. आज ऋतु शर्मा यहाँ पे नहीं है शो में. मेरा नाम है अश्विनी. आई हैव बीन कवरिंग हर शो. मेरे बाद आ रहे हैं सुमधुर आवाज वाले अनुराग जी. उनका साथ दीजिएगा दोपहर 1 बजे से लेकर 4 बजे तक. और उसके बाद में आएंगी हमारी सरिता सबरवाल जी. तो लाइंड अप है आपके लिए बड़े ही एंटरटेनिंग शो. जो सारे के सारे जो प्रेजेंटर्स हैं वो इतने खुश होकर यहाँ पे स्टूडियो में आते ना, आप लोग यकीन नहीं कर सकते. हम लोगों की ना जो एक पैशन की जो पराकाष्ठा होती है, आई नो इट्स वेरी वेरी क्लिष्ट हिंदी, बड़ी शुद्ध हिंदी में बात कर रही हूँ मैं, मतलब जिस लेवल का पैशन हम लोगों में होता है यहाँ पे स्टूडियो पहुँचने का, वो देखने बनता है कि सारे के सारे जो प्रेजेंटर्स पहुँचते हैं ना, उनका स्माइल, दे हैव अ ब्रॉड स्माइल, और जब वो स्टूडियो में एंटर करते हैं ये, एंड वो ये कहाँ से आता है? आप सबके प्यार से. हमेशा की तरह ऐसे ही बस एंड करने वाली हूँ शो, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई प्यार जिंदगी में बहुत ज़रूरी है, तो प्यार दो, प्यार लो, और पावर तो किसी को बर्बाद करने के लिए चाहिए. एंड आई एम श्योर आप बड़ी प्यारी प्यारी सोल्स हों जो अपनी पावर का यूज़ तो नहीं करते होंगे, है ना. और मेरा शो होता है मंडे से फ्राइडे शाम 7 से 10 बजे तक, द इवनिंग शो विद अश्विनी. हर रोज कुछ नया एंटरटेनमेंट लेकर आपके लिए मैं हाजिर हो जाती हूँ. कई लोगों को आश्चर्य हुआ कि अश्विनी आज यहाँ कैसे, तो आई वॉज कवरिंग ऋतु. अब ऑन दैट नोट्स आई हैव टू से कि प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, इंजॉय करे अपना वीकेंड. दो गीत आपके लिए छोड़ के यहाँ जा रहे हैं, इसे कहते हैं बाय.
3: ये है
4: Leica Radio.
5: लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
6: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी. मुस्तफा बासमती XXL राइस 40 LBS सिर्फ 24.99.
5: हमजा समोसास 3 for 10.
6: टॉप स्टार फ्राइड अनियंस ओनली 99p.
5: सुहाना मसालास 2 for 150. रामदेव नमकीन 2 for 149.
6: हीरा ग्राम फ्लावर 179. हाइंस केचप 279.
5: केसर मैंगो पल 149. फूल मखाना 2 for 5. फाल्कन कैश एंड कैरी
6: 82 Assistant Street LE12JU या रोलेट्स हिल LE5. 4UN.
5: While stocks last,
4: Citybond Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
7: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
4: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
7: Also explore 2026 cruises
4: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester or call Citybond Travel on 01162 167 225. We're at all protected.
8: Mum always said, beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath, over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care. Siddhayu, now available in Falcon Cash and Carry, Leicester and Nottingham. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
10: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
9: high appreciation
10: in Dubai.
11: Halke fulke moments ko aur bhi khas banaye Jamin snacks ke halke fulke puff bites ke saath.
12: Rice corn se bane light aur quality mein best Jamin puff bites jo hai barbecue, lemon chili, mast masala aur Mexican salsa jaise flavors mein available.
11: Jamin puff bites available at your nearest ethnic grocery stores.
13: Every child deserves a childhood, but many children in India are forced to leave school far too early. Cry UK is helping children stay in school and build brighter futures. Just £25 could help two children continue their education. Visit www.ukcry.org and help to make a difference.
14: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEVESAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and Moti Chur Laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
6: Yeah, like a gold.

0: again.
1: Listen to the freshest hits added daily on Leica Radio.
2: ZTV HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां। मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से।
3: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है?
4: खुद से भी ज्यादा।
2: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में।
4: जो बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है।
2: क्या ये नजदीकियाँ बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुम से तुम तक हर रात 8 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT394.
5: You probably think you're pretty good at multitasking behind the wheel. I mean, you have to multitask to drive. So what's wrong with checking your phone? The thing is, your brain simply for quick reply. Affects your concentration and makes you less able to react to hazards. If you use a mobile phone while driving, you're 4 times more likely to crash. Think. Put your phone away.
6: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर। ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी, सब कुछ फ्रेश और टेस्टी। लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS। कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड वेम्बली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर्स लेस्टर में।
1: This is the largest commercial Asian radio network in the UK. On this week's Leica Extra podcast, Weddings and Beyond with Donny Brasco.
7: It was these two creators and they had a wedding and they only had about 20 people and they were able to do individual introductions of all their guests to introduce them to other guests and how much they meant to them in their life. And I just thought that was so nice. I mean, if I did that for 300 people, they'd be there for a week.
1: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms. Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
8: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: लाइका रेडियो पंजाबी लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ते लाइका रेडियो डॉट कॉम ते एलेक्सा प्ले लाइका रेडियो पंजाबी पंजाबी.
1: You've got great products, loyal customers, but no digital strategy. You're one scroll away from being forgotten. Don't risk it. HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Don't disappear. Dominate. Visit HeartyHanks.com today.
2: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 0116-471-0697 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk.
1: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: Asia Basmati Rice available on special offers at Falcon Cash & Carry, Syston Street, Leicester and Nottingham. Hurry while stocks last.
1: Pepe's Piri Piri is turning up the heat. Pepe's Piri Piri on Belgrave Road, Leicester, with grills fired up and ready to serve your flame-grilled Piri Piri favourites. Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
2: भक्ति प्रेम और समर्पण की एक दिव्य कहानी।
3: अच्छा कान्हा, क्यों जा रहे हो?
4: क्योंकि नियति मेरे बस में नहीं।
2: देखिए कृष्णा, राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा की अमर लीला।
4: वचन दिया था राधा को निभाना पड़ेगा।
2: कृष्णावतारम इन सिनेमाज नियर यू।
4: ये बंसी तुम्हारी राधा और मेरा नाम भी।
5: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEEDSAVER online or in-store. From stunning gift tins to rasmalai and moti chur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
6: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
7: ZTV HD पर देखिए साहस और जज्बे की नई कहानी
8: जगदात्री,
7: जिसमें माँ गौरी की सरलता बसती है।
8: माला ले आना, लाइया जी।
7: वो वक्त आने पर महिषासुर मर्दिनी भी बन जाती है।
9: टीम, get ready for the action।
7: जिसके शांत स्वभाव में भी छिपा हो शेरनी का रूप, वो है जगधात्री। देखिए रोज रात 8:30 ZTV HD और Z5 पर, अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT394।
10: माँ को बोल कि जल्दी मच्छी लेकर आए।
11: हो, अपनी माँ को बोलो मैं लेकर आऊंगा।
12: नाम परशुराम, अधर्म का करता हूँ काम तमाम।
10: अरे कहाँ हो तुम?
11: हो, आलो आलो।
12: परिवार उसके लिए चारों धाम, बाहर वो है परशुराम।
0: Watch Mr. and Mrs. Parshuram Monday to Sunday at 7:30 PM only on Utsav Plus. Sky Channel 705, Virgin Media 803 and EE392.
6: Listen back to your favorite shows by logging on to likearadio.com and selecting Midlands or the mobile app. This is the Leica Radio Network, broadcasting across the UK. This week's number one on the Leica Radio Network Chart Show. Tune in every Saturday at 4 PM with Niraj across the Leica Radio Network.

0: रुपए किया,
1: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी।
2: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती।
1: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी, गंगा माई की बेटियाँ, हर शाम 7 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394।
3: This is the largest commercial Asian radio network in the UK. The biggest 25 songs of the week with Niraj. Number 22.

क्या। लिसन टू लाइका गोल टू ऑन लाइका रेडियो मोबाइल ऐप लाइका रेडियो डॉट कॉम एंड एलेक्सा प्ले लाइका गोल टू। ये है लाइका गोल।

अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा डर कैसा, अगर जीत गए तो क्या कहना, अगर हारे भी तो बाजी मात नहीं।

0: If not Sonia, but it's Donny. But big up, Sonia. We miss you.
1: This is the Desi Vibe Show with Sonia. Like a radio. CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Laika Radio.
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
3: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
2: High appreciation.
3: In Dubai.
4: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEEDSAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and motichur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
1: Laika Radio Network. Proud hospitality partner. Ragasan.
5: कुछ एक्साइटिंग खाने का मन है तो आओ एग जंक्शन लेस्टर, यहाँ मिलेगा सिजलिंग एग कीमा, फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर्स. सबके लिए कुछ न कुछ है. 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS पर. चाहे डाइन इन करो, टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरी से मंगवाओ, कॉल कीजिए 0116-332-5100. एग जंक्शन जो वेम्बली और किंग्सबरी में तो है, अब लेस्टर में, जहाँ हर बाइट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी.
6: ZTV HD पर देखिए साहस और जज्बे की नई कहानी
7: जगदात्री,
6: जिसमें माँ गौरी की सरलता बसती है.
7: माला ले आना, लाया जी.
6: वो वक्त आने पर महिषासुर मर्दिनी भी बन जाती है.
8: टीम, गेट रेडी फॉर द एक्शन.
6: जिसके शांत स्वभाव में भी छिपा हो शेरनी का रूप, वो है जगधात्री. देखिए रोज रात 8:30 ZTV HD और Z5 पर. अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394.
9: Punjab, the biggest tunes.

0: ये है लाइका रेडियो टीवी एंड C5 प्राउडली प्रेजेंट हमारे राम प्रोड्यूस्ड बाय फेलिसिटी थिएटर इंडिया और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एज रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई इवेंट इम अपोलो हैमरस्मिथ हमारे राम बुक योर टिकट्स नाउ विजिट www.eventimapolo.co.uk एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410 एट ऑल प्रोटेक्टेड। वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन।
3: Pepe's Piri Piri is turning up the heat. Pepe's Piri Piri on Belgrave Road, Leicester, with grills fired up and ready to serve your flame-grilled Piri Piri favorites. Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
4: Atif Aslam, live in the UK.
5: To the O2 London on Sunday the 14th of June.
4: Book your tickets now at AXS. Exclusive radio partner, Leica Radio.
6: Bring your vision to reality with ImagineX Global. Our team of Imagineers create immersive experiences from digital content to epic live events. Whether it's a high-energy concert, an innovative conference, sleek brand visuals, or stunning photography and videography, for your special moments, we have you covered. We're a tech-driven, human-led creative experience company delivering cutting-edge digital solutions and expert event management. Let's turn your ideas into epic memories. Contact us today at ImagineXGlobal.com or WhatsApp 0758-580-1801. And let your ideas take center stage. ImagineX Global, where creativity, technology, and humanity unite the world.
7: 89% of UK customers check online before they spend. If they don't find you, they won't choose you. Go digital. Visit heartyhanks.com now. Hearty Hanks. Facts don't lie. Results don't wait. Visit heartyhanks.com now.
0: Easing you through the night with the Midlands' biggest Asian hits on Leica Radio.

0: Leica Radio. The wait is now over. The King of Melody, Kumar Sanu, live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
1: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
0: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
1: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasam.
0: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Embryo Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio.
2: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
3: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
2: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
3: गारंटेड
2: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
3: फोन 02085748410।
2: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: भक्ति, प्रेम और समर्पण की एक दिव्य कहानी।
5: मत जाओ काना, क्यों जा रहे हो?
6: क्योंकि नियति मेरे बस में नहीं।
4: देखिए कृष्णा, राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा की अमर लीला।
6: वचन दिया था राधा को निभाना पड़ेगा।
4: कृष्णावतारम इन सिनेमाज नियर यू।
6: ये बंसी तुम्हारी राधा और मेरा नाम भी।
7: This is the largest commercial Asian radio network in the UK. This is the Leica Radio Network, broadcasting across the UK. Bollywood romantic hits throughout the night. This is the Love Sound.